0: 2500
1: श्री स्वर्गदारी महाप्रभु को जय। दांग को सान रुंटी ब्रांड सामान गुणस्तर में दम छ, मूल्य आधा कम छ।
0: गुणस्तरीय सामान का लागि सदैव हामीलाई सम्झिनुहोस्। प्रभु लघु उद्योग घोराही 15

समुदाय को लागी सामुदायिक रेडियो जलजला एफएम 96.4 मेगाहर्ज। जलजला ट्रैक चेक। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा रातको 10 बज्यो।